0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: और वहाँ चोरी डकैती होती रही। वहाँ के लेखा अधिकारी ने गंभीर आरोप 2023 में लगाया, चंपत राय बंसल से शिकायत करी, बल्कि उनके खिलाफ ही उन्हें हटा दिया गया। इंजीनियर वर्मा ने कहा कि वहाँ 40% से ज्यादा कमीशन, क्योंकि निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के PWD जो मुख्यमंत्री के अंदर है, वहाँ 40% मंत्री निर्माण में 40% कमीशन लिया गया। और RSS सोता रहा, RSS लोग जो जानकारी आ रही है, पैसा नागपुर जा रहा था, ये हजारों करोड़ की लूट है। RSS ने सुनियोजित रूप से चंपत राय बंसल को और वहां गोपाल राव जैसे सीनियर जो RSS के पदाधिकारी हैं उनको तैनात किया, अनिल मिश्रा सीनियर पदाधिकारी रहे। इन लोगों का जो मनी ट्रेल है बैंकों का, इनके जो इन्वेस्टमेंट है, रॉ को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ईडी सीबीआई में जो टॉप क्लास के फोरेंसिक अधिकारी तैनात होते हैं, लॉयर हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए सीबीआई।
1: All right, we'll leave it there. Thank you so much for joining us on NDTV. Their reaction to the RSS's first statement on the Ayodhya donation theft case. Well, with that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
13: नाउ वाचिंग एनी टीवी 24/7। द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज। विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे, द टीएमसी आल्सो हैज डन अ बिट ऑफ बीजिंग। Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
12: When stories have impact.
14: Padmata Joshi, managing editor and primetime anchor.
12: Then news has influence. The buck stops here with Padmata Joshi.
13: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team Any TV will go from strength to strength.
12: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
15: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
16: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
17: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
18: It's also important that how they are reshaping the industries.
19: We've got a fantastic

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
6: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
5: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से
5: देश का टायर, जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन, नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो। ऑडियंसेस कंटिन्यू टू चूज एनडीटीवी अक्रॉस टेलीविजन एंड डिजिटल। एनडीटीवी ट्रस्टेड अक्रॉस एवरी स्क्रीन।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
14: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
13: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
14: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
13: What would that young man in India say if he could see you right now?
14: I'll be up there soon with you.
12: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
15: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों
5: देश का टायर, जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे गांव, मेरे गांव का नाम है दुन्ने के। ये पंजाब में एक ज़िला है मोगा, वहाँ पे छोटा सा गांव है दुन्ने के। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है यहीं से, अपने गांव से। 10th तक पढ़ाई की है यहाँ पे, फिर मैंने 12th की है लाइक मोगा में जा के, लाइक कहीं या उसके बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज चल रहा है। मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई है छोटे, एक बहन है बड़ी, तो इतना हूँ। पापा में लेबर करते हैं, मम्मा भी करते हैं किसी के घर में काम। मैं इसी गली में बड़ी हुई हूँ, यहीं पे खेलती थी मैं पूरा टाइम।

0: बचपन से मतलब इसको शौक ही था गाने का जी। चौथी साल में वो गाना थोड़ा सा लग गया था गाने के लिए।
1: मेरा स्कूल फ्रेंड था तो वो उसने लाइक एक पेज बनाया था तो मैंने उसको देखा। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था जो बहुत अच्छा सिंगर भी है, राइटर भी है, ही इज़ वेरी गुड। तो मेरे को लगा कि यार इसको भी करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू जा वहाँ पे, तू कर, तो हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि मैं जानती थी उसको, वो नहीं जानता था। तो हम गए वहाँ पर, उसने किया। तो जो मेरा स्कूल फ्रेंड था जिसका वो पेज था, उसने बोला कि यहाँ इस पर कोई लड़की भी करती है ना आप में से, तो इन्होंने बोला कि ये कर लेती थोड़ा बहुत। तो पहले तो मैं नर्वस थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने गा दिया तो आई डोंट नो हाउ, पर वो रील काफ़ी वायरल हुई। वो एक मैंने बनाया था एक पंजाबी और थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके। You're the one I let it never

0: मैंने तो अपना फ़ोन देखा भी नहीं था, ऐसे डाल दिए थे लाइक नॉर्मल। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो बैक मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई देख तेरी रील वायरल हुई। मैं क्या अच्छा, तो उसके बाद DMs आए है ना, काफ़ी आर्टिस्ट ने लाइक लोगों ने अप्रोच किया। बेसिकली मैंने सोचा ही था कि मेरे को तो जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कुछ तो मेरे से होगा नहीं, टीचिंग ही कर लूंगी मैं, यही सोचा था।
1: की पता नहीं तेरे च देखिया।
0: रैपिंग और सिंगिंग की शुरुआत बस दोस्तों को देख के साथ में करते थे, तो सोचा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए।
1: और जितना तेरे च सजना कोई है मैं तानी फील ले गया मारी सहन तू ऐसी अपना।
0: जो कॉलेजेस में होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया लाइक उस वहीं से। मेनली जब यूथ फेस्टिवल हुआ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मैं जीत गई थी। तो हाँ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, लाइक मेरे टीचर्स ने भी बोला कि यू शुड ट्राई है ना, तुम अच्छा गाती हो। तो उसके पहले मैं लिखती नहीं थी, मैं गाती ही थी।
2: वे जा तेरे वस दी ना गल, मेरे रूट छड़ दे ते किसे होर दारा मल, सिद्धी तीर वर्गियां पुठी जरा ना मैं गल, हाथ अज भी नया वा नहीं होना तेरे कल।

जब रील वायरल हुआ तो है ना, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि मेरे को तो ऐसा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो

0: मुंडे हुड विच
1: ये है मेरे दोस्त, इसका नाम है साहब, इसका नाम है शन्नू। तो कैमरा ऊपर है, ऊपर देखो। दोनों ही बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको मिली। तो इसी वजह से साथ में है, कह सकते हैं। ये स्कूल में था और ये कॉलेज में था। अपने मेरा डायरी गाना तो सुना होगा, है ना? तो ये इन्होंने लिखा था।
2: लिखने की वजह बस डायरी थी हाथ में
3: और सैड के हाल चल रहे
1: थे। सैड के
3: सोचा कि कुछ
2: लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उसकी फीलिंग्स देखी जाए। जैमिंग करते करते वो गुनगुनाया गाना, वो टीम को अच्छा लगा और तब वो देखा कि चलो इसको दे देते हैं,
1: इसको दे देते हैं।
2: हमने कर लिया,
1: इसने कर लिया, एक ही बात है।
2: डायरी दे वर क्या उते हंजुआ नाले लिख दिया वे, तू क्या सी हंस दी रा कर हंसना ही सिख दिया वे, पर मेरे हौसे तुर गए तेरे ही नाल वे।
1: फरिश्ते आवाज़।

0: आज हम लंच में खाएंगे आलू के पराठे।
1: चलो चलेंगे।
0: आज खाने में है अचार, चटनी और पराठे और दही। लासी छाछ नहीं है ब्रो ये।
2: साइफर हम करते थे ना, तो ये सिर्फ यही लड़की थी जो साइफर पे गाती थी। इसके बाद काफी लड़कियों ने बोला कि हम भी गाएंगे या हम भी करेंगे। कई कईयों के तो साथ घर वाले भी साथ देने लगे।
0: देखो तो काफी अच्छा लगता है कि मैं इंडिया को एज अ फीमेल रैपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ या फिर कर पा सकूँगी आगे, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ बाकी सब वाहेगुरु पे।

0: तुम लोग मुझे सिद्धू मूसे वाले जैसे रिलेट करते हो तो आई फील वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ लेके आपको जोड़ रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत, एक तो पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मेरे को उनके साथ जोड़ना, इज लाइक प्राउड फील, लाइक नाउ प्राउड नहीं, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, प्रेशर भी लगता है और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही थे, उनके जैसा कोई है नहीं अभी तक, ना ही कोई होगा, या तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है बहुत।
1: दिल बस तेनू पाले रातां जो जाग के कटियां आयोंदी।
0: मैं तो डेली 10-15 बार इंस्पायर होती हूँ, यहाँ से कोई निकल गया चलते मैं तो उससे इंस्पायर हो जाऊंगी, ऐसे सबसे ज्यादा इनके पास हंसती हूँ पता नहीं क्यों। जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपको एक गाने को जो देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले हम देखते थे गाना बस वाइब करने के लिए, ठीक है ठीक, अब देखते हैं भाई ये आए तो वो बहुत लाइक बहुत ध्यान देने लग गए उन चीजों पे।
2: असि तेनू पहला ही क्या सी कि तू भी गा,
0: हाँ
2: ये बोल रही थी, मैं नहीं गाऊंगी, छोड़ो मैं नहीं गाऊंगी,
0: मैं क्या करूंगी,
2: इसको धक्के से गवाया था,
0: धक्के से लाइक जबरदस्ती, कैसे थोड़ी सी जबरदस्ती की तो फिर मैंने गाया।

0: उसके अगली बार फिर जब साइफर हुआ तो हम कल पिक देख रहे थे वो केक वाली।
1: हाँ कल देख रहे थे हम। हाँ, पास
0: एक साल हो गया उसको, कल एक साल हो गया उस
1: मैं दिखाऊं आपको मेरे पास है।
0: सुखे ने वो भेजी हुई स्नैप।
1: ये हमारा फिर जब 1 मिलियन हुआ था रील पे तो केक काटा था।
2: इसकी खुशी ज्यादा हुई थी।
1: इसकी तो बहुत थी।
0: इसकी खुशी ज्यादा थी क्योंकि वो सभी ने पैसे जोड़ जोड़ के केक लेके आए
1: थे। हाँ, सब ने लाइक इन्वेस्ट किया था वो छोटे से केक। चलो चलो कॉलेज चलिए।
0: चलो चलो।

परम बनना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की लाइक वो थी और डिसीजन लेने की आप में थोड़ा गट्स और लाइक आपको डिसीजंस लेना पड़ता है। मेरे को भी पड़ा था लाइक बहुत से, जब आप इस उम्र में होते हो यू नो किसी भी लाइक फील्ड में जाने के लिए, या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत से ऑप्शन होते हैं, पर आपको सही चूज़ करना बहुत, कई बार लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर मैं अब गाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती, कभी बोलती नहीं कॉलेज में, मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जो मुझे मोटिवेट करते, तो लाइक दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स, मुझे तो मेरे लिए तो यही प्राउड मोमेंट होता है जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से बाहर जाना है, तब मेरे को कोई कुछ पूछता नहीं है वापस से कि भाई कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, तो मैं इनके साथ वही, तभी वही अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब फ्रीडम है। अब पहले थी रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो हाँ वो अभी थोड़ा फ्रीडम है, खुद चूज़ करने का फ्रीडम है, और यू कैन चूज़ एनी थिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। पहले घर वाले थे कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है।

मेरे को तब लगा कि मुझे लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, जब मैंने एक ही दिन में मेरे को किसी बच्चे ने भी बोला दीदी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, उसी दिन मेरे को एक ओल्ड लेडी ने भी बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को लोग सुन रहे, क्योंकि हमसे छोटे हमें सुन रहे हैं, हमसे इतने बड़े भी सुन रहे हैं, सिटीजन्स लाइक सीनियर सिटीजन्स भी सुनते हैं, तो तब लगा मेरे को भी यहाँ मेरे को थोड़े लोग सुन रहे हैं।

0: ये है राजवीर मेरी सहेली, मुंह देख लो इसका।
1: मेरे नमस्ते भी कर
0: रहा। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम गुरदत्त है। रखे पातशाह देखदा है सच्चे पातशाह।

0: अब हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक यहां पे हमारा थिएटर का थिएटर की चीज हो चीजें होती हैं।
1: तू कहना मैंने क्लासिकल नहीं तो
0: तू तो ये हमारा स्टेज है, यहां पे हम बैठते हैं, विश्वनीय क्लासिकल गाते हैं, लोग कभी बार नाचते भी हैं। ये हमारे सारे साथी हैं।
2: सही कहा है।